0: Board Radio.
1: वो नहीं कोचा है नहीं, अन्यों पहले इंदहम और आवेरु करे मालूया।